0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
0: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
4: हाँ जी, मैं हूँ इका और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो। हाँ जी, 167।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
0: वेखो दस्तार तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माधवन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: ओल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टनविच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई को तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: जदों दियां टुटियां नहीं आईयां तंग कर दियां तैनू दिलदारियां, जदों कदे दिल साडा हुंदा है उदा असीं एदा तेरा दुख झलदे। हुण साडियां स्पीकरां ते उच्ची उच्ची बोलो, हुण साडियां रेडियोआं ते उच्ची उच्ची बोलो, सैड सॉन्ग चलदे। सत श्री अकाल जी, मैं साडा सुखी म्यूजिकल डॉक्टर ते सुनते रहो जी रेडियो। हाँ जी, मैरो 1674 AM साढ़े गाने सैड सॉन्ग जैगर और ब्लैक इन्होंने मशहूर किए ने, साढ़े तक पहुंचाए ने। सो

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: हाँ वे सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नूं तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
1: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
6: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
1: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।

0: कोई ना,
1: एकी मैं कुफर तो लिया
0: कोई ना,
1: एकी मैं जहर को लिया
0: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना,
2: ओ हटके।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: भैरतमान कोल दो ही चीजां हुंदियां ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो इनेज सरपंच।
3: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
2: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई को तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
7: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
3: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
8: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
7: Create terror.
3: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टंच।

0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नूं तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।
3: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
6: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
3: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
7: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
6: क्रिएट टेरर।
3: ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ।
1: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
2: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਯੋਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
1: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ, ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
8: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
5: रेडियो हांजी 16748।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
2: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे।
6: आहो जी आहो।
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: भी है, प्यार भी है।
1: हाँ, थोड़ी मोटी नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना? तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Hanji Radio.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

जोड़ मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वालियो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
5: क्रिएट टेरर।
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
6: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
7: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: लादे फेरे।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो।
5: यू आर लिसनिंग
6: हां जी हां जी, हां जी हां जी, हां जी हां जी, रेडियो हां जी,
5: रेडियो हां जी, 1674 AM, 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन,
6: रेडियो हां जी।
5: स्टे ट्यून्ड।

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Oh, oh, oh.

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आदि गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जे जीव सावै ताकी महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभ सिमरत काछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन आंदन जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हरंग
1: प्रभ कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभ कै सिमरन नाहि जम तरसा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरै सी धनवंते प्रभ को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभ को सिमरै सी जन परवान प्रभ को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभ को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरै सी सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभ को सिमरै सी पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभ को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभ को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभ कै सिमरन कारज पूरै प्रभ कै सिमरन कबु न जूरै
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कुर पर मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भग जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जमदा लै तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नाम मन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परमगत पाइए
1: छूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्म मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हो मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साध कै संग
0: जे मार के गन जाहे न कूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोघाम तिहार के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझा करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै
1: भग जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेकै
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ न है बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहुत शास्त्र बहुत सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमृत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਉ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਣ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਵੁਰਨਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਜੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਊਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿੰਨੀ ਮਨ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੈ
1: ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆ ਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਓ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਥਾਓ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂੰ ਰਸਮ ਬਖਾਨੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਰਾਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਬਸਤਾ ਤੁਜੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
0: ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ
1: ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ

कर्मखंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोत महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होरवी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, Sister Shivani.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti, and welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Sister, last episode mein hum baat kar rahe the about victim kaun hai aur
1: master kaun hai.
0: Master kaun hai. अभी आपने जिस चीज को मैं अभी तक मास्टर समझता आ रहा था उसको विक्टिम बोल दिया. अब 360 डिग्रीज का चेंज है मेरी थिंकिंग और आपने जो सिखाया उसमें.
1: विक्टिम मींस कौन? स्लेव मींस कौन? जो गुलाम है. जो मास्टर है, मालिक है अपने मन का, और एक है जो अपने मन का गुलाम है. जिसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मन को जब चाहे जहां चाहे जिस तरह चलाए वो नहीं चला सकता है, वो गुलाम है. जिसका मन की स्थिति उसके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के व्यवहार पे डिपेंडेंट है. और इसीलिए वो सारा दिन अपने पे मास्टर बनने की बजाय, अपने पे रूल करने की बजाय औरों पे रूल करने की कोशिश करता है. सी, वन थिंग इज, अगर आपका व्यवहार मुझे इरिटेट कर रहा है, अभी कोई भी बात आपकी मुझे इरिटेट कर रही है,
0: मैं पेन लेके टिक टिक टिक टिक,
1: चलो ठीक है, इतनी छोटी सी चीज है, आप पेन लेके टिक टिक कर रहे हो, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यू नो, क्रैकिंग देयर नकल्स,
0: प्लास्टिक की थैली में सामान निकालते जा रहे, चिप्स खाते जा रहे, मैं पिक्चर देख रहा हूँ.
1: अब ये कितनी छोटी बात है, इनफैक्ट इसको कोई हम बात भी नहीं कह सकते. एक छोटी सी सीन है, कोई ऐसा कर रहा है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड. And at that time I say, you irritate me. Right? You irritate me. And then I go to the extent of saying, you are very irritating. We say this, ये हमारी vocabulary है, ये हमारी रोज की भाषा है. ये बहुत irritating है. ये बहुत irritating है. या ये मुझे irritate कर रहा है. Means, कि इसका ये व्यवहार मेरे अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ रहा है. राइट? अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं इस टाइम पर. या तो मैं अपने मन को इसके व्यवहार के प्रभाव से बाहर निकाल लूं. मतलब यहां आपका एक्शन, यहां इरिटेशन. ठीक है, दो चीजें हो रही हैं. ये इरिटेशन मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूं मेरा मन वापस शांत हो जाए. तो एक ऑप्शन ये है कि मैं अपने मन को कहूं, हे मन, क्या प्रॉब्लम है, इतनी सी बात पे इरिटेटेड? वो कर रहे हैं, तुम अपना आराम से बैठो प्यार से. ये एक ऑप्शन कि अपने मन को इंस्ट्रक्शन देना. दूसरा ऑप्शन, आप प्लीज आराम से बैठेंगे ताकि मैं शांत हो जाऊं. तो दो लोग हैं जिनको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूं अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए. या तो अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि शांत हो जाओ, या आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं कि आप ठीक हो जाओ. आप ठीक हो जाओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है.
0: मैंने सोचा भी नहीं ऐसा.
1: मैंने सोचा भी नहीं
0: ऐसा. मैं अपने आप को बोलूं, मैंने तो ये नहीं सोचा. मुझे लग रहा है कि माँ बेटा ले आए हैं चिप्स खरीद के इंटरवल में, खर खर खर खर खर खर, अच्छा सीन चल रहा है मूवी में, और वो कचर पचर खाते भी जा रहे हैं.
1: वी आर नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं
0: वो राइट है,
1: वो राइट है या रॉन्ग है. अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ भी, या जैसे कई बार हम प्रोग्राम्स करते हैं या मूवी में है, तो किसी का मोबाइल बज जाता है. अभी वी कैन से, इट्स वेरी इजी टू से, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, मोबाइल नहीं बजना चाहिए. ओके, राइट, मोबाइल एक साइलेंट प्लेस पे, या आप पूजा में है, मेडिटेशन में है, मंदिर में है, थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मोबाइल नहीं बजे. ओके, लेकिन बजा एंड आई गॉट इरिटेटेड. अब दो ऑप्शन है ना, या तो अपने मन को ठीक कर दूं या उनको ठीक कर दूं. एंड रिजल्ट क्या चाहिए? मन शांत हो जाए. दिस वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, व्हाट इज द एंड रिजल्ट बिहाइंड एवरीथिंग. आई वांट पीस एंड हैप्पीनेस.
0: आई वांट
1: पीस एंड हैप्पीनेस मींस आई वांट माय माइंड टू बी काम. अब जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा मन जो एकदम अच्छा शांत चल रहा था वो ऐसे ऐसे होने लग गया, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया,
0: बच्चे को सिखाते नहीं है, ये नहीं है,
1: हाँ, ये सब चीजें, हाँ. ये मेरी थॉट्स चलने शुरू हुई इन रिस्पॉन्स टू
0: कि थिएटर वाले अंदर क्यों लाने देते हैं खाने की चीजें.
1: राइट, कितनी सारी थॉट्स. सी, ये थॉट्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की इन रिस्पॉन्स टू आपका वो प्लास्टिक की आवाज क्रिएट करना. आपने प्लास्टिक की आवाज की, लेकिन थॉट्स किसने क्रिएट की? वो मैंने की. व्हाट इज द इरिटेशन? हियर दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. लेट अस चेक, व्हाट इज द इरिटेशन? द प्लास्टिक नॉइज और द थॉट्स व्हिच आई क्रिएट इन रिस्पॉन्स टू दैट प्लास्टिक नॉइज.
0: मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चिप चिप चिप चिप चिप चिप, मुझे वो चीज, मुझे ये थॉट्स क्रिएट मुझ में वो कर रहे हैं.
1: वो
0: मैं नहीं कर रहा हूँ.
1: एक प्लास्टिक का पैकेट, एक बॉल पेन का टिक टिक,
0: डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी.
1: दैट डिस्टर्बेंस इज क्रिएटिंग सच थॉट्स इन मी. थॉट कहाँ क्रिएट होती है?
0: मुझ में क्रिएट हो रही है ना उसकी इरिटेशन.
1: यहाँ क्रिएट हो रही है ना?
0: हाँ, मेरे मन,
1: मेरा मन कहाँ पे? यहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. प्लास्टिक बज रहा है वहाँ. बॉल पेन टिक टिक हो रहा है वहाँ. मोबाइल बज रहा है वहाँ. थॉट क्रिएट हो रही है यहाँ. किसने क्रिएट की?
0: इस सिचुएशन ने, इस परिस्थिति ने.
1: बट उस बॉल पेन,
0: इनके बिहेवियर ने,
1: इनके बिहेवियर यहाँ है. आपका बिहेवियर यहाँ है.
0: बाहर का बिहेवियर मेरे अंदर वाले को डिस्टर्ब कर रहा है ना?
1: बाहर का बिहेवियर यहाँ है ना? अभी आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बिहेवियर यहाँ है. लेट्स से आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है, ये भी हम बोलते हैं अभी एक मिनट के लिए कि आपका बिहेवियर कंप्लीटली रॉन्ग है, लेकिन यहाँ है. आपके बिहेवियर को देखकर मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ. आपने अभी कहा वो प्लास्टिक चिरचिर चिरचिर मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट करता है. वो प्लास्टिक मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट करता है? यहाँ? वो यहाँ घुसकर थॉट क्रिएट करेगा?
0: उसकी वजह से हो रहा है.
1: उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है?

0: तो
1: अलग अलग थॉट्स ना,
0: हाँ?
1: तो वो है एक प्लास्टिक, हर एक के मन में अलग अलग थॉट्स क्रिएट किया
0: जी।
1: किसने क्रिएट किया अलग अलग मन में थॉट?
0: अलग अलग आदमी ने।
1: क्रिएटर कौन है वो फाइनल?
0: मैं क्रिएटर हूँ,
1: प्लास्टिक
0: मुझ में क्रिएट हो रही है।
1: ये पक्का?
0: ये नहीं ना
1: कि वो प्लास्टिक
0: और इस क्रिएशन से मैं दुखी हूँ,
1: वो भी कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट ये बात जितनी छोटी लगती है ये उतनी छोटी नहीं है कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जो हमने कहा पहले कि वो प्लास्टिक की चुर चुर मेरे अंदर वो थॉट क्रिएट कर रही है, वी वर सेइंग दैट इज क्रिएटिंग दिस एंड दैट्स व्हाई वी सेड दैट इज इरिटेटिंग। That is irritating.
0: That person is also irritating.
1: That person is also irritating. Because that person's behavior caused me to create this. Let us at least now remember, चाहे वो एक छोटा सा प्लास्टिक की आवाज है, चाहे वो जीवन की एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इक्वेशन सेम होगी। एक चीज हमें कंप्लीटली हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, प्रॉब्लम या चैलेंज जो भी जीवन में आता है वो उसका साइज कुछ भी हो, इक्वेशन सेम रहेगा हमेशा। जैसे मैथ्स में हमें इक्वेशन सिखाते थे ना एग्जाम में जाने से पहले, प्रॉब्लम थोड़ी पता होती थी कौन सी आएगी एग्जाम में, लेकिन इक्वेशन सही हो गई तो प्रॉब्लम कोई भी आए, राइट इक्वेशन। ये इक्वेशन को अपनी लाइफ में पहले फिक्स करना है, उनका व्यवहार, उनका वो पेन टिक टिक करना, उनका लेट आना, उनका झूठ बोलना, उनका इनसिंसियर होना, उनका मुझे धोखा दे देना, उनका कुछ भी कर देना, वो बाहर है, वो यहां है, यहां तक सीमित है। कोई मुझे फाइनेंशियली धोखा दे सकता है, कोई मुझे फिजिकली भी मार सकता है, कोई मेरे पास सब कुछ जो है वो सारा कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन उस छोटी सी बात में या बड़ी से बड़ी बात में मैं कैसे सोचूंगा, क्या सोचूंगा, कितना सोचूंगा, यू नो लाइक इस केस में भी आपने कहा प्लास्टिक क्यों लाए, बच्चे को पेरेंट ने सिखाया नहीं, थिएटर वाले ने अंदर लाने क्यों दिया, रूल सी दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ।
0: 10 सेकंड पहले एक चिड़िया जरूर से बोली, उसके साथ एक कौवा बोला, जब आप बात कर रही थी तब मेरी आंख भी वहां नहीं गई, वो तो एक्सेप्टेड था ना,
1: एक्सेप्ट
0: क्योंकि हम जंगल में है,
1: राइट,
0: चिड़िया बोलेगी कौवा भी बोलेगा, नेचुरल नॉइज आएगी,
1: राइट
0: तो मैं वहां थोड़ी बोलूंगा ये चिड़िया क्यों बोली,
1: क्यों बोली, एक्सेप्टेड है। लेकिन थिएटर में कोई प्लास्टिक की आवाज करे नॉट एक्सेप्टेड।
0: अभी आप इंटरवल में खाओ, बाहर खा के आओ,
1: हाँ ये भी है ना, बाहर खाओ ये नहीं मालूम आपको, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम किसको दे रहे हैं?
0: अपने आप को, अपने मन मन में दूसरे को दे रहे हैं,
1: दूसरे को दे रहे हैं, और दूसरे को वो इंस्ट्रक्शन देते हुए हम क्या कह रहे हैं, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन,
0: करेक्ट,
1: योर वर्ड, योर बिहेवियर, योर एक्ट is causing me pain. I want happiness in life. Please change. ये equation हमने बना ली जीवन की। आपका व्यवहार मुझे दर्द देता है, मुझे जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए, प्लीज आप बदल जाइए, प्लीज चेंज। सारा दिन जीवन में कर क्या रहे हैं?
0: यही,
1: औरों को बदलना, औरों को बदलना, औरों को बदलना।
0: मेरी गाड़ी का दरवाजा जोर से मत मारो, मुझे दर्द होता है,
1: वो भी ठीक है। अगर आप गाड़ी में हैं, किसी ने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आपको बोलना है
0: बट इरिटेट नहीं होना है, ये नहीं बोलना है कि इसको अकल नहीं है, गाड़ी में कभी बैठा नहीं, क्यों बिठाया, क्यों लिफ्ट दिया इसको, लिफ्ट मांग के जोर से दरवाजा बंद करते, और शीशा उस जमाने में पुराने, अब तो वो है बटन, वो शीशा ऐसे से खुला करते थे, ऐसे नहीं होता था, तो शीशा भी उतर के मुझे वापस चढ़ाना पड़ता था,
1: वो भी इरिटेशन,
0: देखो
1: सी। एंड फिर ये सारा कुछ सोचने के बाद सोच लिया, वो
0: एक
1: भी
0: तो लिफ्ट दूं,
1: नहीं नहीं वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सोच लिया, ये सारी थॉट्स क्रिएट कर ली, मन अशांत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं,
0: और ब्लेम तो उसको ही करूंगा जिसने
1: ब्लेम किया। उसको किया,
0: उसी ने मेरी खिड़की खुली रखी, उसी ने मेरे दरवाजे को जोर से मारा, कर्टेसी नहीं चाहिए,
1: नहीं नहीं परफेक्ट, सी ऑल दीज लाइन्स आर सो ब्यूटिफुल, उसने लिफ्ट मांगी, उसने खिड़की खुली रखी, उसने दरवाजा बंद किया जोर से,
0: गंदे चप्पल जूते लेके मेरी मिट्टी भी डाली मेरी गाड़ी में,
1: मेरी गाड़ी में मिट्टी भी डाली, ये सब कुछ उसने किया,
0: और सिगरेट भी पीने जा रहा था जब मैंने डांट दिया,
1: ओके, तो ये सारा कुछ उसने किया, सो वी आर गोइंग टू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर थिंग्स, लिफ्ट मांगी, गाड़ी खिड़की खुली रख दी, दरवाजा जोर से स्लैम कर दिया, मिट्टी गाड़ी में भाग गई, सिगरेट भी गाड़ी में पी ली, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फाइव थिंग्स?

0: ही इज रिस्पॉन्सिबल. मैंने क्या क्या सोचा वो सब देखने के बाद, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल.
1: मैं तो सोचने पे मजबूर हुआ ना.
0: मजबूर मतलब, मजबूर कौन होता है? जो गुलाम होता है.
1: प्रैक्टिकल में देखो आप,
0: प्रैक्टिकल में
1: आप यहाँ बैठे हैं.
0: हाँ,
1: धूप लग रही है.
0: राइट.
1: तो आप बोले यार बहुत धूप लग रही है.
0: परफेक्ट.
1: और छांव में जाओगे बोलेंगे कितना ठंडा, अच्छा है.
0: परफेक्ट
1: बोलेंगे. इसी तरह मुझे वो सारा गाड़ी वाला जो हुआ, मैं बोले सब कुछ बुरा लगा.
0: अब इतनी देर में जब आप इनके बारे में सोच रहे हैं जो गाड़ी से उतर के चले गए हैं, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं. उतनी देर में
1: से उतर के चले नहीं गए, जाते जाते ढेर सारे प्रॉब्लम छोड़ के गए.
0: प्रॉब्लम छोड़ गए ना, खिड़की खुली रख दी, गाड़ी गंदी हो गई, सिगरेट की भी स्मेल आ रही है, दरवाजा भी हो सकता है थोड़ा सा खराब हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स वो देके गए हैं मुझे, चैलेंजेस. अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी वाली बातें सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं. 5 मिनट बीत गए, आप इरिटेशन क्रिएट हो रही है. उतनी देर में आपको एक फोन आ गया और वो फोन कोई और थोड़ी बड़ी बात आ गई, शायद आपके बिजनेस में, आपके स्टॉक मार्केट में, आपके कहीं और, या कुछ भी ऐसी बात कि कहीं और थोड़ा कोई बड़ी बात आ गई, ऊपर नीचे हो गया है. अब आपको वो व्यक्ति नहीं याद आएगा ना?
1: नहीं, उससे बड़ी चीज याद आएगी.
0: अब वो बात गई,
1: वो गई,
0: अब वो थॉट गई. अगर वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, इट वुड बी देयर. हुआ क्या, उस व्यक्ति के व्यवहार को लेकर एज अ स्टिम्यूलस मैंने ये थॉट्स क्रिएट की. जैसे ही मेरे पास कोई और स्टिम्यूलस आ गया, वो थॉट फिनिश्ड. अब ये नेक्स्ट थॉट शुरू हो गए. अब सपोज स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब मैं उसके बारे में चिंता क्रिएट करने लग गया. एंड देन आई सेड इट्स बिकॉज ऑफ टुडेज स्टॉक मार्केट, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्लक्चुएशन हैपनिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर. एंड आई केप थिंकिंग. एंड मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल? द मार्केट. यू नो, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, लोगों का ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, सब में फ्लक्चुएशन होती है, ये सब हो रहा है. उतनी देर में आपके पास एक और फोन आता है कि सपोज परिवार में, फैमिली में किसी के साथ थोड़ा कुछ हो गया, अब स्टॉक मार्केट कुछ असर नहीं कर रही मेरे ऊपर. अब वो बात भूल गई, वो थॉट गई, बात बड़ी थी लेकिन अब उससे एक बड़ी बात आई. अब उस बात को लिया, उस बारे में सोचना शुरू कर दिया. लेकिन अब होगा क्या, जब वो थोड़ी छोटी वाली प्रॉब्लम थी, ये तो कितनी छोटी बातें, अभी उसके सामने गाड़ी बंद नहीं हुई, मिट्टी आ गई, ये कितनी छोटी बात. फिर उससे बड़ी बात मार्केट क्रैश, फिर उससे बड़ी बात कि परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया. लेकिन जब वो छोटी वाली बात थी, उसमें इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते करते मैंने अपनी स्थिति को क्या कर दिया था,
1: सब हिला दिया
0: था. हिला दिया था ना, मैं टर्बुलेंट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इरिटेट हो गया. ऐसी स्थिति में जब बड़ी बात आई, तो उस बड़ी बात में मैं अब कैसे थॉट्स क्रिएट करूंगा, स्टेबिलिटी
1: नहीं, फिर उस लेवल से शुरू होगा वो तो.
0: यस,
1: ऑलरेडी अगर मैं 60 पहुंच गया हूँ,
0: right.
1: वो मेरा 10 से शुरू होगा.
0: एब्सोल्युटली.
1: 61, 62 शुरू होगा.
0: एब्सोल्युटली.
1: 0 to 10 नहीं होगा,
0: नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी
1: 75 आना है तो 60+75 होगा.
0: मेरी स्थिति इरिटेशन वाली थी, बड़ी बात आई, अब मेरी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज्यादा टर्बुलेंट. एंड आई विल बी लाइक, फियर भी क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई, एप्रिहेंशन, एंग्जाइटी ऑफ द फ्यूचर, ये सब क्रिएट हो रहा है. उतनी देर में एक और फोन आया कि फैमिली में कुछ हुआ है. अब थॉट्स किस क्वालिटी के क्रिएट होंगे?
1: ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी हो गया, एक
0: now
1: और प्रॉब्लम.
0: गो इवन मोर टर्बुलेंट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टर्बुलेंट. अगर वो जो बड़ी वाली बात थी, लेट से ये व्यक्ति लिफ्ट ना लेता, मार्केट की न्यूज नहीं आती और आप आराम से गाड़ी में ड्राइव करके जा रहे थे, और उस टाइम आपको सीधा पहले ये फोन आए
1: सिर्फ कि फैमिली में कुछ हुआ है,
0: यू आर इन अ स्ट्रॉन्गर स्टेट ऑफ माइंड टू फेस दैट सिचुएशन. तब भी आपको चिंता होगी, डर लगेगा, या जो भी वो थॉट्स आएंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेबल एंड देन क्रिएटिंग लिटिल टर्बुलेंस. लेकिन जब छोटी बात में टर्बुलेंस, फिर बड़ी बात में ज्यादा टर्बुलेंस, तो जब तक बड़ी बात आ गई, वी क्रिएटेड केओस. वाई टूडे वी सेड दैट देर इज केओस इन आर माइंड, क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें जो कि रोज आती है, बड़ी बड़ी बातें, ये जो चैलेंजेस बड़े कि फैमिली में कोई हेल्थ, बिजनेस में कोई क्राइसिस, रिश्तों में कोई क्राइसिस, कभी कभी आता है जीवन में सिर्फ, ये हर एक के जीवन में कितनी बार आ जाएगा, ये दो बार?
1: लेकिन आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसका कोई दवाई जैसे कोई बीमारी की होती है या किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल देते हैं, इसमें कोई तरीका नहीं है जीने का?
0: सिंपल तरीका ना, अब नेक्स्ट टाइम कोई आपकी गाड़ी में फिर लिफ्ट लेगा, हम बड़ी बातों को नहीं फेस करेंगे अभी. दिस इज अगेन अनदर इक्वेशन. डोंट ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ इन बिग सिचुएशंस. हम एक्सपेक्ट करें कि मेरे सामने कोई बड़ी बात आ जाए एंड मैं स्टेबल रहूं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ. लेट अस ओनली
1: शुरुआत कैसे करें?
0: छोटी छोटी बातों में. एंड छोटी बातें में
1: चिप्स वाली बात, चिवड़े वाली बात,
0: कुरकुर वाली बात, फिर वो गाड़ी में कोई बैठा और खिड़की खुली रख दी या जोर से दरवाजा,
1: भाग के दूसरी को सीट ले लें, भाग जाए, क्या करें?
0: वही बैठे. इनका व्यवहार सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, राइट? लेकिन मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता. अब उन्होंने जिस तरह से गाड़ी बंद करनी है कर दी. हे मन, मैं उनको नहीं कंट्रोल कर सकता, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तुम तो मेरी बात मानो. शिफ्टिंग फ्रॉम विक्टिम स्लेव. स्लेव मतलब जिसको कहना मानना पड़ता है, एंड मास्टर मतलब जो कहना मनवाता है. अपने मन के मास्टर, रूलर, विच मीन्स हम जब मन को कहेंगे बस इसके ऊपर दो थॉट्स क्रिएट कर लेना, That's all that was needed. 50 thought नहीं चाहिए इतनी सी बात के लिए. बस कर दिया ना उन्होंने, वो ठीक है, उनको नहीं आता था कैसे करना है ना. Next time I will choose.
1: चिवड़ा चिप्स जब खत्म हो जाएंगे आप ही, आवाज बंद हो जाएगी,
0: नहीं भी आएंगे तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है.
1: जब जोर से चिड़िया बोली कौवा भी बोला,
0: तो एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट क्यों? एक्सेप्ट बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. This clarity, ये knowledge, they are not in my control. ये equation fixed. I am the creator of my thought. हाँ, ये देखेंगे कि वो अपने आप क्यों आ जाती है thought. जैसे आपने कहा ना, मैं choose थोड़ी कर रहा हूँ गंदी वाली thought create करनी है. अगर मैं choose करता तो अच्छी वाली करता. कितनी गंदी करनी है, इतनी गंदी कैसे कर दी है, मैंने choose थोड़ी किया. Choose कैसे करना है, that's a second part. First important is only who is the creator of my thought, and for that very important, never ever are now we going to say they are irritating, they irritate me. No, get irritated, but now the language will have to be I create irritation in response to their behavior. So ye ab interesting game hame sara din khelne hai ki situation, log, mera man, दो एंटिटीज है.
1: ये अच्छा आप कह रहे हैं, गेम
0: गेम है ना, दो चीजें हैं.
1: मेरे कान में दर्द होता है वो देख के, टिक टिक कोई पेन मारता रहता है.
0: चलो इतनी सिंपल भी चीज है कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? प्लीज ऐसा मत कीजिए. हम बोलते हैं ना किसी को, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सपोज, राइट? राइट. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस. ईदर आई टेल यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, और आई टेल माय माइंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब.
1: इसको एक बार बोलूंगा, हाँ. पांच मिनट के बाद फिर शुरू कर देगा, या पैर ऐसे ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा ताकि कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, मेरी भी कुर्सी.
0: इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है दुनिया में कितने लोगों को बोलेंगे. ये सब जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं. व्हाट अबाउट द बिग थिंग्स देन? लोग अपने अनुसार जीवन जियेंगे. आप सिर्फ ये दो ऑप्शन को हर समय अब सारा दिन आज रखना है. ये होमवर्क है, ये होमवर्क है. सामने कोई ऐसा कर रहा है, अब छोटी चीजों में करना है ये होमवर्क, बड़ी चीज में नहीं करना कि किसी ने कोई मेरे साथ गलत किया, धोखा दिया. फॉरगेट बिग थिंग्स टुडे. एकदम छोटी छोटी बातें, किसी का फोन बज रहा है, कोई ट्रैफिक में रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, कोई ओवर स्पीड कर रहा है, कोई मेरी गाड़ी से बहुत नजदीक जा रहा है, कोई लेन टच कर रहा है, कोई लेट आ रहा है.
1: छोड़ दीजिए, कोई खाने पे मुझे बुलाता है तो समझो चार औरतें खाना खिला रही हैं, जबरदस्ती की मेरी प्लेट में खाना वही सब्जी डाल देते जो पसंद नहीं है.
0: ठीक है,
1: अब उसको कैसे बोलूं कि भाई मत डाल, पूछ तो लो.
0: हाँ, कैसे बोल सकते हैं?
1: एक बार बोला, हाँ. नहीं नहीं नहीं, आपको खाना है बहुत मजे की, तुम्हारे लिए मजे की होगी भाई.
0: हाँ.
1: हाँ, मुझे चावल खाने, रोटी दो, अब घी वाली खा लो एक रोटी.
0: ठीक है.
1: अब ये इरिटेटिंग पॉइंट्स लगते हैं मुझे. आप पता नहीं क्या आपको कैसे लगता है कि इन चीजों को पूरा दिन बर्दाश्त करता रहूं. नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन मुझ में है.
0: नो नो, वी हैव टू, वेरी फाइन, व्हाट्स द सोल्यूशन? लेट्स आस्क मी आई आस्क माई सेल्फ व्हाट्स द सोल्यूशन.
1: सोल्यूशन ये है कि चुप रहो, बर्दाश्त करते रहो.
0: नो, ये सोल्यूशन नहीं है कि चुप रहो. सोल्यूशन है पहले अपने मन को चुप कराओ.
1: लेट्स से
0: आप यहाँ हैं, ओके, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखकर मैं इरिटेशन क्रिएट कर रही हूँ. सो लेट मी, चलो फर्स्ट ट्राई एंड कंट्रोल यू.
1: जी,
0: इवन इफ आई फील दिस इज
1: जैसे, चलिए पहले एपिसोड्स में मैं बोलता जा रहा था, आपको इरिटेट कर रहा था, मैं अपने ओल्ड बिलीफ
0: में. मैंने नहीं कहा कि आप इरिटेट हो रहे थे. हाँ, तो आप इरिटेट
1: तो
0: नहीं कर रहे थे
1: और आप इतना अच्छा जवाब दे रहे थे प्यार से, और मैं चिड़चिड़ के बोल रहा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है. मैं पहले तीन एपिसोड में मैं चिल्ला तो रहा था.
0: अब
1: तब आप कैसे शांत थे, ये मुझे समझाइए ताकि मैं भी सीख लूं आपसे.
0: आपने
1: वही प्यार से ऐसे ऐसे ऐसे मीठा मीठा जवाब दिया, आपकी ना आवाज उठती है ना जीजी होती है, ये सब क्या जादू है ये.
0: क्योंकि आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था.
1: जो मैं चिड़चिड़ कर रहा था, आपको टोक रहा था, बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मैं बात नहीं मान रहा था आपकी, मेरी आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, यहाँ तक मैंने बोल दिया कि आपकी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तब भी आप शांत रहे.
0: जब हम स्वीकार करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है, वो भी चलो गहरी बात, वो हम धीरे देखेंगे बाद में. पहले हम सिचुएशन में देख लें. सपोज चलो आप ये सिचुएशन कहो कि लेट्स से आप बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार कट कर रहे हैं,
1: बट आपकी बात करते करते बीच में भी बोल रहा था.
0: ठीक है, चलो सिचुएशन, वन सिचुएशन. तो दो ऑप्शन है मेरे पास, दो ऑप्शन है. या तो एक, आपको कंट्रोल करो. आपको कंट्रोल करो मीन्स आपको बोलो डोंट टॉक लाइक दिस टू मी,
1: डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग,
0: डोंट डिस्टर्ब,
1: ताकि मेरा फ्लो टूटता है. आप इतना तो बोल सकते थे, वो भी नहीं बोला आपने.
0: आप पूछ रहे हैं, इंटरजेक्ट कर रहे हैं. दो ऑप्शन, एक तो पहले चेकिंग कि क्या मेरा मन अशांत हो रहा है. अगर मन अशांत नहीं हो रहा तो एवरीथिंग इज परफेक्ट. अब दूसरी ऑप्शन, अगर मन अशांत हो रहा है तो मैं आपको बोलूं प्लीज डोंट डिस्टर्ब. फिर आप जब वो करना बंद करें मेरा मन ठीक हो जाए.
1: लेकिन मैं जब लोग मेरी प्लेट में चावल या रोटी जबरदस्ती डाल जाते हैं और हट जाते हैं और मैं बोल देता हूं कि भाई आप जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, चिढ़ जाता हूं, उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा मन अशांत हो रहा है. रोटी से पहले पता चले तो मैं नहीं कुछ नहीं बोलूं ना.
0: राइट, अब इसका मतलब नहीं, बट इसका मतलब
1: कभी कभी दो दिन बाद लगता है कि मैंने रूडली बोल दिया.
0: दैट्स बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चला गया है. अवेयरनेस नहीं होगी, इट्स लाइक रॉन्ग टर्न ले लिया. अवेयरनेस नहीं है, 4 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि रॉन्ग टर्न लिया है. अगर ड्राइव करते हुए अवेयर होते हम जर्नी ऑफ लाइफ पे तो टर्न लेते ही पता चलता ना कि रॉन्ग टर्न लिया है. ऐसे ये सारा दिन में संस्कार क्योंकि ऑटोमेटिक बन चुका है तो उस टाइम अवेयरनेस नहीं आएगी. अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा नहीं इसका मतलब कि लोग कुछ भी करें. दिस इज नॉट वॉट इट इज से कि ठीक है आपको जो करना है आप करो एंड आई विल नॉट से एनीथिंग. इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आई विल गिव इंस्ट्रक्शन हियर, देन आई विल गिव इंस्ट्रक्शन देयर. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. हमें
1: क्या ये हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दूं फिर उसको जरूरत ही ना पड़े वहां देने की?
0: नहीं, अगर आपका रोल है एज अ पेरेंट सपोज, एज अ टीम लीडर सपोज, सपोज आपकी गाड़ी में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है एंड इट डजंट गो वेल फॉर यू, आपके लिए हेल्दी नहीं है, एनवायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, इवन अ सिंपल थिंग लाइक इट्स नॉट नाइस फॉर मी,
1: तो आई वॉन्ट टू से
0: आई वॉन्ट टू से इट टू द अदर पर्सन. लेकिन गेट इरिटेटेड एंड देन से इट, तो फिर बात यह हो जाएगी कि आपका सिगरेट पीना मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है. मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है. आप सिगरेट इसलिए ना पिए क्योंकि मेरा मन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है. और दूसरी चीज ये है, मैं ठीक हूं, मेरा मन भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप सिगरेट ना पिए
1: वातावरण खराब होता है मेरे.
0: टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. ये चीज सारा दिन देखनी है. कंट्रोल उनको कर नहीं रहे हैं, अपने को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर सिचुएशन और लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं.
1: वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट. मतलब जो मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ कि अकल नहीं है तुमको, सिगरेट पीते हो, पीना है तो उतर के पियो, गाड़ी रोक लो, इधर जाओ उधर जाओ, हमको तो बोल दो, दूसरे आदमी को पसंद है नहीं पसंद है पूछो, इतना करने के बदले उनको कंट्रोल नहीं करके अपने आप को कंट्रोल करो और उनको
0: इंस्ट्रक्शन भी देना है.
1: आई एम एलर्जिक, मुझे अच्छी नहीं लगती.
0: एंड वाई आर यू गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर. that instruction is not for your peace of mind, because you are already peaceful. This is very important.
1: Isn't it for my peace of
0: mind? No, you're already peaceful, because you did not get disturbed.
1: अच्छा क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल करके समझा दिया.
0: कंट्रोल मतलब आई डिड नॉट गेट फ्लक्चुएट. आप मुझे नहीं फ्लक्चुएट कर पाए.
1: तो मैं इस वक्त काम और पीसफुल और स्टेबल हूँ.
0: हाँ, लेकिन परिस्थिति, ऑफिस का काम, घर का स्टाफ, बच्चों का कर्म, ये सब का ध्यान रखना भी मेरी जिम्मेवारी है. तो आई विल गिव इंस्ट्रक्शन, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज फॉर द वर्क, फॉर देयर डिसिप्लिन, फॉर देयर बिहेवियर, नॉट फॉर माई पीस ऑफ माइंड. My peace of mind is not dependent on them. मैं मालिक बन के फिर बाहर मालिक बनू. जब मैं गुलाम हूं तो मैं मन का भी गुलाम हूं. पहले मैं मन का गुलाम हो गया तो मैं उनका गुलाम हो गया कि तुम मेरी स्थिति को कंट्रोल करते हो. तो फिर मेरी जीवन कैसी हो गई? That's a slave. Slave to people's behavior.
1: पहले slave to yourself भी तो हो गए.
0: जो slave to yourself है वही तो फिर slave to people's behavior. तो पहले अपने मन के मालिक, फिर परिस्थिति के मालिक.
1: वेरी नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सर. मेरे अभी तो प्रश्न बहुत हैं और बातें बहुत पूछनी हैं, मगर टाइम हो रहा है. तो शैल वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड.
0: थैंक यू सो मच.
1: ओम शांति. थैंक यू सो मच.
0: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस एट

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी रेडियो हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com.in

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।